हमें जाल मेत्र हम बिल्कुल आते अकुसाई रासो बीब जाई ले चेरी की हलाज को।